0: कर लो।
1: टेंशन टेंशन निधि टेंशन
2: की हुआ
1: थे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
2: काका जी टेंशन छोड़ो फोन चको कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
1: या 90-77-93
2: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
1: याद रखो 9077-9733
2: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
1: हर कदम तुहाडे नाल।
3: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों। याद रखो डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू प्रॉपर्टी दा मसला कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने बंसल लॉयर्स तुहाडा भरोसा साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au। सोना चाहिदा
1: भरोसा चाहिदा
3: क्वालिटी ते बाईबैक भी चाहिदा चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे जिथे 22 कैरेट गोल्ड क्लासी सिल्वर डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत कैश चाहिदा गोल्ड लोन इजी एंड सेफ रिपेयर बुलियन बाइंग सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक कॉल 0493-536-042।
4: एक प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षक या प्रशिक्षक के रूप में आप बच्चों के जीवन को आकार दे सकते हैं। आप अपना करियर बना सकते हैं अपनी विशेषज्ञता साझा कर सकते हैं और विक्टोरिया के बच्चों और परिवारों पर स्थायी प्रभाव डाल सकते हैं अपने करियर को संवारें। अधिक जानकारी के लिए vic.gov.au/kinder पर जाएं। विक्टोरियन सरकार मेलबर्न द्वारा अधिकृत।
5: रेडी सेट गो चेस्टन फोर्ड डेंडिनोंग रोड ते तुहानू उड़ीक रहा है फोर्ड रेंजर रेंजर सुपर ड्यूटी एवरेस्ट ते सदाबहार मस्टैंग ब्रांड न्यू डेमो ते क्वालिटी प्री ओन्ड व्हीकल्स ट्रेड इन अते फाइनेंस ऑप्शंस वी अवेलेबल। आओ ते अपनी नवी फोर्ड दा टेस्ट ड्राइव करो बिजनेस प्लेट लाई गल करो व्हीकल एक्सपर्ट्स टिम फोर्ब्स या कोरी नाल रेडियो हांजी दे हवाले नाल पाओ 3 साल दी फ्री सर्विस। चेस्टन फोर्ड रेडी सेट फोर्ड।
6: पांडे जी क्या तू साला लक पाए हो यार एक दोस्त के साथ पकड़े गए और दूसरी दोस्त छुड़ाने चली है और ये तीसरी दोस्त ही है ना।
7: देखिए प्रजापति पांडे उनकी श्रीमती एंड अदर्स इन पति पत्नी और वो दो 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में।
8: की चाहिदा ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लौना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा मिल जुगा सीधे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस। ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक परोसे योगना जो स्टडी वीजा स्किल्ड वीजा एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा डामा पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील कर देने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490-054-596 गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस .com.au ते जाओ आओ थोड़ा कोई हल करिए।
9: हाँ जी रेडियो
10: मेलबर्न दे साउथ ईस्ट इलाके दे सारे बिल्डर्स ते ब्रिक लेयर्स ले खुशखबरी तुहाडी हर बिल्डिंग दे स्ट्रक्चर दी एक मजबूत नींव अते दमदार पहचान देन ले आ गए ने ओज लिंटल्स। ओज लिंटल सप्लाई कर देने सारे साइजेस दे गैल्वनाइज्ड ब्रिक लिंटल टी बार्स इक्वल एंड अनइक्वल एंगल्स असी करा दे विच स्टील फैब्रिकेशन सप्लाई अते इंस्टॉल वी कर दे हां। कॉन्टैक्ट 0423-102-900 ईमेल sales@ozlintels.au।
11: हमारी लव स्टोरी तो लेजेंडरी बन गई।
12: लेजेंडरी लव स्टोरीज की ही तो एंडिंग ट्रैजिक होती है।
13: From the makers of Rocky और Rani की प्रेम कहानी Dharma Productions presents Chand Mera Dil. Watch Ananya Pandey and Lakshya in Chand Mera Dil coming to cinemas on May 22nd.
14: Chand Mera Dil, Chand Mera Dil.
15: विश्व पद्धर ते तेल दी काट सानू सब नू प्रभावित कर रही है। सरकार कोल एक राष्ट्रीय तेल सुरक्षा योजना है ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੂਜੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੀ ਘੱਟ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਤੇਲ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਛੋਟੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। fuelplan.gov.au/punjabi ਤੇ ਜਾਓ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨਬਰਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ।
0: ਕਿਚਨ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਡਲ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਥਰੂਮ ਵੈਨਿਟੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ, ਹੁਣ ਟੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਆ ਗਿਆ ਜ਼ੀਜੇ ਸਟੋਨ ਮੈਸਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਇੱਕਦਮ ਕਲਾਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸਟੋਨ ਬੈਂਚ ਟੌਪਸ ਫਾਰ ਕਿਚਨ, ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਵੈਨਿਟੀ ਅਤੇ ਮਾਡਰਨ ਲਾਂਡਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੋਰਸਿਲਿਨ ਅਤੇ ਮਾਰਬਲ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਐਲੀਗੈਂਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਡਿਊਰੇਬਿਲਿਟੀ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ ਘਰ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਈਨ ਕਰੇਗੀ ਸਟੋਨ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ। ਕਾਲ ਕਰੋ 0400 045 555 ਜਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ 104 Collins Road, Melton.
16: Orbit Homes अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उना दे सुपनियां दा एक मजबूत कर। House and Land Experts Orbit Homes अपने 44 वरियां ते तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% fixed price guarantee with an industry leading 24 month price lock. अज ही पहुंचो Orbit Homes Display Centers या कॉल करो हरपन चौहान नो 0433-280-252 ते 0433-280-252
17: Hey, what's wrong with you? Why did you people start dancing?

0: नहीं ऐवे होना चाहिए एक हो और नेक हो
1: पति पत्नी और वो दो हम तो सारिया फिल्म भी लग गया हूं कितों हूं तो टप गया काम तो सो आम तौर दे ते नवे नवे जो आप आने तो उदो शायद ये चीज़ा शायद घट सानू ना एक फिर भी मतलब जिमें अंकड़िया के हिसाब ना वेखा तो ये कुछ उल्ट कह रहे हैं पर मैं ये लगता भी जो आप नवे नवे आने ना सानू एक आस होंगी है आस भी तुहानू जिउंदा रखती है आस भी तुहानू स्ट्रैस नहीं होण दिंदी सानू आस होंगी है भी अगे जो आप पी आर हो गए पढ़ाई खत्म हो गई नौकरी वधिया मिल गई ना तो अं ठीक हो जाए
0: सब वधिया हो जाए
1: उदों तक सगों तुहानू उस लैवल ते ये चीज़ा परेशान नहीं करदियां तुहानू पर जिदा ही तुहानू वो चीजा मिल जांदियां ते तुहाडी आस जी टुटदी है भी आ भी मिल गया भी मिल गया भी मिल गया
0: हुण की
1: ये तो होर वध गया कम सो फिर आपां बस धक्के दे नाल आपां आपां तुरे जाने सो किसी नूं भी किसी किस्म की जां फिर आस पास तुहाडे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो लाइफ लाइन दे उत्ते तुसीं कॉल कर सकदे हो 13 11 14 के उ 24 घंटे के लिए नंबर हों ब्लू बोंड के उत्ते ब्लू बोंड बियोंड ब्लू के उत्ते कॉल कर सकते हो जिहड़ा कि 24 घंटे के लिए नंबर हों इस तो अलावा जेकर तुसीं किसी किस्म की कोई लैंग्वेज की तुहानू समस्या वा तो तुसीं अपनी भाषा के विच गल करन दे लई 13 14 50 के उत्ते तुसीं कॉल कर सकते हो जिहड़ी भी तुहाडी भाषा उस भाषा के विच ही तुहाडे नाल गल कीती जाऊगी सो अजे दे विच कोई भी आस पास तुसीं वेखदे हो जां तुहानूं कोई शिकायत तुहाडे परिवार नूं कोई किसी किस्म की शिकायत लगती है तो इहनूं हल्के दे विच ना लिया जाए सब तो पहलां अपने GP दे नाल गलबात की जाए लोकल GP दे कोलों मैंटल हैल्थ प्लान तुसीं बनवा सकते हो उस तो अलावा जिहड़ियां होर अगे दियां स्टैप ने वो तुहानूं जरूर दसणगे जेकर नहीं तुसीं GP को जाना चाहुंदे तो घर बैठे तुसीं लाइफ लाइन दे उत्ते जां फिर बियोंड ब्लू दे उत्ते कॉल कर सकते हो
0: एग्जैक्टली बड़े आसानी नाल इत्थे तां आपां इहो जी कंट्री च रह रहे हैं इत्थे बहुत वधिया तरीके नाल तुहाडी हैल्प हो सकदी है बट कदम ते तुसीं उठाना पएगा तुहानूं करना पएगा
1: तुहानूं ही कहना पैणा भी हाथ खड़ा करोगे फिर ही टीचर कहूगा ना हाँ जी दसो
0: की दिक्कत है
1: सो जांदे जांदे एक चीज जिहड़ी मैनूं बहुत वधिया लगदी आ ते उही तुहाडे नाल भी शेयर करूंगा कि जिंदगी दे विच जदों आपां अगे अगे तुरे जाने एक स्टेज इदां दी आउंदी आ तुसीं बहुत ज्यादा महसूस करदे हो ते उदों ये चीज़ तुसीं जरूर याद करो कि जिंदगी दे विच आपां उदों ही परेशान होंदे आ जदों सानूं दूर तक कुछ दिख नहीं रहा होंदा सानूं जदों महसूस होंदा भी अगे ते नेरा ही नेरा वा अगे सानूं साडा फ्यूचर नहीं दिख रहा सानूं साडा फ्यूचर परेशान करदा सानूं लगदा भी अगे ते मंजिल ही कोई नहीं है मैं नेरे च तुरिया जाना तो उदों एक चीज़ जरूर याद रखियो कि जदों आपां चानण लै के तुरदे हाँ आपां दीवा लै के तुरदे हाँ जिंदगी एक दीवा लै के तुरन वांगू आ ते दीवे दी चानण दी मोमबत्ती दी एक खासियत आ कि सानूं अगला कदम दिख रहा हुंदा अपने हाथ च जदों चानण हुंदा ते सानूं पता हुंदा ही अगला कदम कित्थे धरना ते वेख्या जावे ते जदों तुसीं अगला कदम धर लोगे ते फिर अगला कदम दिखना शुरू हो जाए सो एवरी डे हर पल तुसीं जिद्दां जिद्दां कदम अगे वधाई जाओगे ओ दीवा ओ चानण ओ लो तुहानू अगला विखाई जाओगे पर जे तुसीं इह वेख रहे हो हथ ते दीवा धर के ते तुसीं 10 किलोमीटर अगे वेख रहे हो किलोमीटर अगे वेख रहे हो भी हाए अगे ते नेरा वा पर तुसीं याद रखो कि तुसीं उड के नहीं उत्थे पहुँच सकदे उड के पहुँचण वाला ते उत्थे भी फिर नेरे च कितें कंध च वजूगा जाके है ना किसी रुख ते टंगिया जाऊगा सो तुसीं एक एक कदम हौली हौली बेबी स्टैप जदों एक एक वधाई जाओगे उही लो अगे अगे तुरी जानी है तो उही तुहानू एक एक स्टैप तो वह जो तुहानू दिख रहा वा अगे उत्थों तक तुसीं पहुँच जाना वा आखिरकार पर कहण दा मतलब है कि ठहरा थोड़ा जा सुकून तो थोड़ी जी पेशेंस रखनी पवेगी सानू भी ये नहीं है भी रातों रात तुसीं जे तुसीं रातों रात पहुँचने की गल करोगे तो इस दीवे चों तेल तुसीं डोल बहना समझ सकते ने समझ गए ने इनू फॉलो करो जिहड़े नहीं समझे तुसीं किसी वेले भी मैसेज जां फोन कर सकते हो जां फिर कोई भी तुहाडे जानण दे विच समझण दे विच सियाणा जिहदे नाल तुसीं गल करनी वधिया लगदी है तुहानू उहदे नाल जरूर करो

आओ शुरुआत करते हैं अज के खबरनामे की। इंटरनेशनल खबर के नाल सब तो पहला शुरुआत तो हमेशा की तरह आस्ट्रेलिया का जड़ा सैगमेंट होएगा खबर का उस दे विच जरूर सांझ पा के रखियो अज दियां बड़ियां दिलचस्प खबर ने। पहली खबर संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE यूनाइटेड अरब एमीरेट के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 48 घंटों के दरमियान देश की हवाई रक्षा प्रणालिया ने 6 ड्रोनस नू तबाह किया। मंत्रालय का कहना है कि यह ड्रोन देश के नागरिक ते अहम इलाकों नू निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे। बयान के मुताबिक इन्होंने घटनावां दे विच किसी भी व्यक्ति नू कोई नुकसान नहीं पहुंचे। UAE के रक्षा मंत्रालय ने यह भी दस्या है कि 17 मई 2026 नू बराका न्यूकलीयर पावर प्लांट के उत्ते हुए हमले की जारी जांच के तहत ट्रैकिंग ते तकनीकी निगरानी के नतीजों तो पता चलिया कि इस घटना दे विच इस्तेमाल किए गए 3 ड्रोन इराक दे खेतर तो आए सन। इन्हां दे विच 2 ड्रोन नू सफलतापूर्वक मार गिराया गया सी जदकि तीसरा ड्रोन उसे दिन पावर प्लांट की अंदरूनी सरहद के नेड़े स्थित एक बिजली जनरेटर के नाल जा टकराया सी, जिस तों बाद भारत सने दुनिया भर के मुल्कां ने UAE ते हुए इन्हां ड्रोन हमलों की निंदा की सी। हालांकि ईरान ने तुरंत जां फिर उस तों बाद भी इन्हां हमलों की कोई जिम्मेदारी नहीं ली सी। UAE का कहना है कि इस घटना तो बाद जिन्हां होर ड्रोनस नू इंटरसैप्ट किया गया ये भी इराक के खेतर तो ही आए ने। उत्थे अगली खबर की जे सांझ पाईए तो ईरान का कहना है कि उसकी फौज हुण पहलां तो भी ज़्यादा तैयार ते मजबूत है। यह बयान खातम अल अंबिया सेंट्रल हैडक्वार्टर के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने किया है। ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने कहा कि ईरान की फौज हमेशा तैयार सी ते किसी भी दुश्मन का सामना बड़ी सख्ती दे नाल देन दे लई तैयार सी, बल्कि हुण तां होर भी ज़्यादा तैयारी दे नाल। ये बयान डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के जवाब दे विच मन्या जा रहा है जिस दे विच उन्हां कहा सी कि वह ईरान दे उत्ते मंगलवार दे दिन हमला करन वाले सी, हालांकि खाड़ी देशों ने उन्हां नू रोक दिता। हालांकि ट्रंप ने अगे भी कहा कि जे कोई समझौता हुंदा है तां ठीक, नहीं तो फिर बड़े पद्धर दे उत्ते हमले किते जाणगे। उधर रूसी राष्ट्रपति वाल्दिमीर पुतिन की चीन यात्रा तो ठीक पहला क्रेमलिन ने चीनी जनता के लिए एक वीडियो सुनेहा जारी किया है। दस दिए कि अदारे BBC की खबर के मुताबिक पुतिन ने चीनी राष्ट्रपति जी जिनपिंग की तारीफ करद उन्होंने अपना चंगा ते पुराना दोस्त दसिया ते कहा है कि दोहां देशों के दरम्यान असल दे विच संबंध बने हुए ने, धरातल दे उत्ते बने हुए ने। पुतिन ने इस गल ते भी जोर दिता है कि रूस ते चीन दे दरम्यान मजबूत रणनीतिक साझेदारी एक अहम जड़ा विश्व पद्धर दे उत्ते भूमिका निभांदी है। रूसी राष्ट्रपति की चीन यात्रा अमरीकी राष्ट्रपति की यात्रा तो कुछ दिन बाद हो रही है। दस दिए कि 19 ते 20 मई नू जड़े रूसी राष्ट्रपति ने वह चीन दौरे ते रहनगे। ये उन्हां दी 25वीं यात्रा है। अज उन्हां दा आखिरी दिन होएगा। इस तो बाद रूस के राष्ट्रपति भारत भी आएंगे। अगे चल के वह खबर की सांझ पाने थोड़े नाल। पर उधर इंटरनेशनल खबरां दे विच आखिरी खबर जिहड़ी है इबोला दे नाल जुड़ी हुई। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो दे विच इबोला की वजह के चलदियां घट्टो घट 131 लोगों की मौत हो चुकी है। इस दरमियान विश्व सेहत संगठन की एक प्रतिनिधि की तरफ तो यह चेतावनी दी गई है कि हो सकता है कि इबोला शुरुआती अंदाजे तो कितने ज़्यादा तेजी के नाल फैल रहा हो। उन्हें यह भी कहा है कि संक्रमण कोंगो के इलाकों के विचों निकल के कई दूसरे इलाकों जा चुके हैं। मंगलवार के दिन तक DR कोंगो के 513 तो भी ज़्यादा मामलों के शक इबोला का जताया गया सी, जबकि गुआंढी देश युगांडा के भी एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। पर लंडन स्थित MRC सेंटर फॉर ग्लोबल इन्फेक्शन डिजीज एनालिसिस की तरफ तो सोमवार के दिन जारी मॉडलिंग के कहा गया कि इस संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता कि मामलों की गिनती 1000 तो ज़्यादा हो चुकी होगी। शक है कि 24 अप्रैल में पहली बार इसका पता चलन तो बाद यह संक्रमण पिछले कई हफ्तों के बड़ी तेजी के नाल अफ्रीकी मुल्कों के फैलिया है। उत्थे अगली खबर की सांझा पाईए तो भारत के नाल जुड़िया हुई
ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਭਾਰਤ ਆਣਗੇ। ਪਤਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 12 ਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਤਾਸ ਨੇ ਵੀ ਕ੍ਰੈਮਲਿਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਯੂਰੀ ਉਸ਼ਾਕੋਵ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਮਿਟ ਸਪਤੰਬਰ

0: फिर मैं मैसेज भी देख सकता
1: नहीं।
0: ओके चलो दसो हिंट फिर। अच्छा कपड़े बनाए दे होंदे आ, फिर ते कॉटन ही होना वा। कॉटन मासी आ, फिर हुण मैं कॉटन नू मासी क्या करना फिर। थैंक यू वाह, दंद आए कि नहीं?
1: थोड़ा जा आया।
0: अच्छा थोड़ा जा आ गया, कोई नहीं, फिर थोड़ा जा आया ते बहुता जा भी आ जाना।
1: हां जी सारे टाइम
0: फिर नहीं समझ लगी कई गलां दी। एक मैं उतो पग बना अज है ना, सो तुम थोड़ा जा ख्याल रखिया करो कि मूवमेंट नाम कराया करो गल कर दे। तुम बिलकुल ठीक हो, मेनू प्रॉब्लम आउंदी, मेनू ना सुन की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है तुम कुछ अपना नाम पूरा दस्या वा तुम, पर यह हूँ तेरे को मैं कल पुछूंगा क्योंकि मैं प्रोपर नहीं सुनिया। मैं आस करदा भी साढ़े लिसनर्स नू जरूर सुन गया होगा। आई थिंक तेग असीस कौर तुम क्या भी मेरा पूरा नाम है ना।
1: हाँ जी
0: हाँ जी, थैंक यू पुत, मैं अगे तो याद रखूंगा। हाँ जी करा दो करा दो। सत श्रीकाल दो अंकल वालों। की हाल है तुहाडा पार्ट टाइम वाले?
1: मैं बढ़िया।
0: तुहाडी पार्ट टाइम जॉब चलदी पता?
1: हां जी
0: हां। हैप्पी हैप्पी?
1: हां जी।
0: तुसी जद जांदे हो तुसी किंडर उदन हैप्पी हुंदे हो?
1: हां जी।
0: गुड, वेरी गुड, फन हुंदा ना?
1: हां जी।
0: गुड गर्ल, की सुनाओगे फिर अज?
1: नानी थे भी मोनी।
0: ओ सुनाओ फिर।
1: नानी थे भी मोर ओ मोर लागे पक्की सावे बच्चे
0: चोर
1: चोर लागे।
0: अच्छी नानी, चंगी नानी, प्यारी नानी
1: देवी मोर वो लागे पक्की सावे बच्चा छो लागे।
0: चोरां दी ऐसी दी तैसी हो नानी लगे हैं?
1: नहीं।
0: हाँ तो ही क्या वा नानी नू
1: काले चोर लागे?
0: आहो तो मैं वही क्या भी ऐसी दी तैसी काले चोरां दी नानी लगे हैं? चलो फिर पुलिस नू दसांगे भी चोर लै गए नानी नू। मैं लगता नानी नू दस दिए पहला भी नाने नू दस दिए भी नानी नू लै गए कि नहीं है? एम्बर
1: हां जी
0: ओके ओके थैंक यू बुद्धू, थैंक यू, तुहाडा दिन वधिया वधिया रहे। थैंक यू,
1: बाय
0: बाय, हैव अ नाइस डे। ते नेक्स्ट साढ़े नाल आ मन्नत, ते उस तो बाद फिर श्रेया तुहाडी वारी। सत श्रीकाल मन्नत, की हाल है बुद्धू?
2: सत श्रीकाल अंकल जी, नाले मामा जी जेड़े नहीं आए हजे।
0: ओए सत श्रीकाल मन्नत जी, मामा जी विआह वेखण गए, विआह व्यू वेंदे फिरदे ही आ। कोई आ कोई समा भला व्याह वेखन दा?
2: नहीं
0: हैं?
2: नहीं
0: हैं? तुहाडे चंगे मामा जी तुहानू नाल व्याह नहीं लैके गए, मैनू तो यही भी रिश्तेदारी आ ते तुहानू भी लैके जाए होणे आ।
2: नहीं
0: हां ओहो चल हो सकदा फिर लड्डू लुड्डू लैके आउण, बूंदी बूंदी बूंदी खा लांगे हैं।
2: हां जी
0: हां जी, पर तुहानू ते बूंदी दा भी नहीं चाह होना, तुसीं ते खांदे रहिंदे जी।
2: हां जी
0: ओहो अज हां जी हां जी वाला मूड ऑन होया वा, की गल आ है मन्नत? चाह नहीं पीती हले?
2: ब्रेकफास्ट तो खाली ऑलरेडी
0: खाली ऑलरेडी। ओके एनर्जी जी नहीं आई हले तक, की गल आ है? हले तक सलाबा सलाबा जिहा लगन डिया वा है।

0: मेरा तो मेनू तो मेरा गला थोड़ा जा खराब फील हो रहा।
1: ओहो, मेरा भी थोड़ा जा खराब फील हो ही जाता। पता नहीं की गल हुई आशीष, किदां ठीक किदां करिए फिर हुण?
0: ठीक, मैं तो पेनाडोल खा ली सी,
1: अच्छा खाली हो गया ठीक।
0: मैं गड़ाने भी कीते सी
1: ओहो, फिर होया ठीक?
0: सॉल्ट वाले पानी नाल।
1: अच्छा वो नहीं मैं कीते है ना, मैं भूल गया, मैं जाके करूंगा फिर।
0: ओके।
1: ताड़ा होया ठीक नहीं?
0: मेरा थोड़ा ठीक हो गया।
1: ते तुही आइडेंटिफाई कीता भी क्यों खराब होया भला?
0: मेनू पता क्यों खराब होया, मम्मा ने मेनू दस्या सी कि दही करके होया।
1: अच्छा दही करके होया।
0: ओके, मेनू लगा दही ठंडी सी ओदे करके।
1: हाँ ताइयो फिर आवाज भी बदल गई आज।
0: ते मम्मा जॉब ते भी सी गए।
1: हाँ ओके ओके, दही रात नू खादा है?
0: यस।
1: हाँ ओके, मे बी फिर ता करके हो गया, जा फिर ठंड च तुसी कपड़े नहीं पाए होने, जा
0: मैं पाए सी।
1: पाए सी ओके, ते जा फिर कोई होर चिप्स चुप्स खादे ही?
0: नहीं।
1: हाँ
0: तेरे कोल तो चिप्स है ही नहीं।
1: चिप्स है ही नहीं? ओहो फिर पता नहीं क्यों ये गला खराब हो जाता। चल कोई नहीं, तुसी रेस्ट करोगे तो फिर ठीक हो जाना, पर गल्लां गल्लां करके तो नहीं कितने हो जाता।
0: हुण मेरा गला गला जे मैं पेट्रोल खाऊंगी।
1: वाज वाज वाज वाज लागे आ जाओ फोन दे पुत, लागे आ जाओ। हाँ जी
0: मेरा फोन तो इत्थे लग गया पया करने दे कोल कोल।
1: हाँ पर आवाज खराब हो गई ही। ते की सुनाओगे आज फिर?
0: आज मैं सुनाऊंगी बोली
1: बोली। ओके ओके सुना लोगे, गला ज्यादा तो नहीं खराब।
0: एक चांदी पूरी गिद्दा पौन पौन जोरो जोर चाचे ताए दी कुड़ी।
1: गिद्दा पौन जोरो जोर चाचे ताए दी कुड़ी। बल बल बल बल बल
0: चक दोर जोता कल जी।
1: ओ बल्ले बल्ले बल्ले बल्ले बल्ले बल्ले बल्ले शावा शावा शावा शावा शावा शावा शावा नाने ना। बल्ले बल्ले बल्ले बल्ले बल्ले बल्ले बल्ले साडे नाल ओ साडे नाल
0: साडे नाल
1: ओ साडे नाल साडे नाल रहोगे ते गले खराब रहणगे। साडे नाल
0: साडे नाल
1: ਸੀਸ ਕੌਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰੌਣਕਾਂ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ। ਗਰਾਬ ਖਰਾਬ ਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲੀ ਸੁਣਾ ਤੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪੁੱਤ, ਰੈਸਟ ਕਰਿਓ ਅੱਜ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਕਰੇ ਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੀਸ ਕੌਰ। ਤੇ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ। हां मेनू लगता ओ ना इसे गलों नाराज हो गए भी मेनू पिनी ते कोई मिली नहीं ते मैं क्यों आवां। एहो गल लगती है। लो भई अज दो दो पिनियां तुहाडे लई ते तुसी आ जाओ। मैं बेनती है जी, जिहड़े भी तुसी दूसरे होल ते हो अपना प्लीज म्यूट कर लो, तुहाडे नाल डिस्टर्बेंस आ रही है मैनू, नहीं ते कॉल तुहाडी कटनी पऊगी। 786 प्लीज म्यूट कर लियो तुसी, उन्नी देर जिन्नी देर तक तुहाडी वारी नहीं आउंदी। हां जी विरक साहब।
0: जेडिया दो पिनिया वा ना ओना नू जोड़ दांगे।
1: हां ए भी ठीक आ, दो पिनिया दी परौंठी बना दांगे।
0: ਪਰੌਂਠੀ
1: ਬਣਾਉਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ ਯਾਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੇੜਾ ਨੀ ਬਣਾਈਦਾ ਤੇ ਪੇੜੇ ਵਰਗੀ ਪਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਲ ਕੇ

मैं जैसमिन हूँ लनिया तुहाडे कोलों इजाजत आस करदी हाँ कि अज का प्रोग्राम तुहानू पसंद आया होगा। चंगा साहित पढ़ते रहो ते अपनी भाषा दे नाल जुड़े रहो।

आओ शुरुआत करते हैं अज के खबरनामे की। इंटरनेशनल खबरों के नाल सब तो पहला शुरुआत, तो हमेशा की तरह आस्ट्रेलिया का जड़ा सैगमेंट होएगा खबरों का, उस दे विच जरूर सांझ पा के रखियो अज दियां बड़ियां दिलचस्प खबरां ने। पहली खबर, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई यूनाइटेड अरब एमीरेट के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 48 घंटों के दरमियान देश की हवाई रक्षा प्रणालियां ने 6 ड्रोनस नू तबाह किया है। मंत्रालय का कहना है कि यह ड्रोन देश के नागरिक ते अहम इलाकों नू निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे। बयान के मुताबिक इन्हां घटनावां दे विच किसी भी व्यक्ति नू कोई नुकसान नहीं पहुंचे। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने यह भी दस्या है कि 17 मई 2026 नू बराका न्यूकलीयर पावर प्लांट के उत्ते हुए हमले की जारी जांच के तहत ट्रैकिंग ते तकनीकी निगरानी दे नतीजियां तो पता चलिया कि इस घटना दे विच इस्तेमाल किए गए 3 ड्रोन इराक दे खेतर तो आए सन। इन्हां दे विच 2 ड्रोन नू सफलतापूर्वक मार गिराया गया सी, जबकि तीसरा ड्रोन उसे दिन पावर प्लांट दी अंदरूनी सरहद दे नेड़े स्थित एक बिजली जनरेटर दे नाल जा टकराया सी, जिस तों बाद भारत सने दुनिया भर के मुल्कां ने यूएई ते हुए इन्हां ड्रोन हमलों की निंदा की सी। हालांकि ईरान ने तुरंत जां फिर उस तों बाद भी इन्हों हमलों की कोई जिम्मेदारी नहीं ली सी। यूएई का कहना है कि इस घटना तो बाद जिन्हों होर ड्रोनस नू इंटरसैप्ट किया गया ये भी इराक के खेतर तो ही आए ने। उथे अगली खबर की जे सांझ पाईए तो ईरान का कहना है कि उसकी फौज हुण पहलां तो भी ज़्यादा तैयार ते मजबूत है। यह बयान खातम अल अंबिया सेंट्रल हैडक्वार्टर दे कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने किया है। ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने कहा कि ईरान की फौज हमेशा तैयार सी ते किसी भी दुश्मन का सामना बड़ी सख्ती दे नाल देन दे लई तैयार सी, बल्कि हुण तां होर भी ज़्यादा तैयारी दे नाल। यह बयान डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के जवाब दे विच मन्या जा रहा है, जिस दे विच उन्हां कहा सी कि वह ईरान दे उत्ते मंगलवार दे दिन हमला करन वाले सी, हालांकि खाड़ी देशों ने उन्हां नू रोक दिता। हालांकि ट्रंप ने अगे भी कहा कि जे कोई समझौता हुंदा है तां ठीक, नहीं तो फिर बड़े पद्धर दे उत्ते हमले किते जाणगे। उधर रूसी राष्ट्रपति वालदिमीर पुतिन की चीन यात्रा तो ठीक पहला क्रेमलिन ने चीनी जनता दे ले एक वीडियो सुनेहा जारी किया है। दसदीए कि अदारे बीबीसी की खबर के मुताबिक पुतिन ने चीनी राष्ट्रपति जी जिनपिंग की तारीफ करदे होया उन्होंने अपना चंगा ते पुराना दोस्त दसिया ते कहा है कि दोहां देशों के दरम्यान असल दे विच संबंध बने हुए ने, धरातल दे उत्ते बने हुए ने। पुतिन ने इस गल ते भी जोर दिता है कि रूस ते चीन दे दरम्यान मजबूत रणनीतिक साझेदारी एक अहम जड़ा विश्व पद्धर दे उत्ते भूमिका निभांदी है। रूसी राष्ट्रपति दी चीन यात्रा अमरीकी राष्ट्रपति दी यात्रा तो कुछ दिन बाद हो रही है। दस दिए कि 19 ते 20 मई नू जड़े रूसी राष्ट्रपति ने वह चीन दौरे ते रहनगे, ये उन्हां दी 25वीं यात्रा है। अज दा उन्हां दा आखरी दिन होएगा, इस तों बाद रूस दे राष्ट्रपति भारत भी आणगे। अगे चल के वह खबर की सांझ पाने तुहाडे नाल। पर उधर इंटरनेशनल खबरां दे विच आखरी खबर जिहड़ी है इबोला दे नाल जुड़ी हुई। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो दे विच इबोला की वजह दे चलदिआं घट्टो घट 131 लोगों की मौत हो चुकी है। इस दरमियान विश्व सेहत संगठन की एक प्रतिनिधि की तरफ तो यह चेतावनी दी गई है कि हो सकता है कि इबोला शुरुआती अंदाजे तो कितने ज़्यादा तेजी के नाल फैल रहा होवे। उन्हें यह भी कहा है कि संक्रमण कोंगो के इलाकों के विचों निकल के कई दूसरे इलाकों से जा चुके हैं। मंगलवार के दिन तक डीआर कोंगो के 513 तो भी ज़्यादा मामलों के शक इबोला का जताया गया, जबकि गुआढ़ी देश युगांडा के भी एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। पर लंडन स्थित MRC सेंटर फॉर ग्लोबल इन्फेक्शन डिजीज़ एनालिसिस की तरफ तो सोमवार के दिन जारी मॉडलिंग के कहा गया कि इस संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता कि

0: ब्रोकर्स। अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा। कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू।
1: जी तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो। फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तो हाडे ले कर देने। बंसल लॉयर्स, तो हाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
2: हां जी हां जी, ओए हां जी हां जी,
3: हां जी रेडियो।

स्वागत है दोस्तों तुहाडा अज दी कहानी अज दे विचार दे विच। अज दा विचार किसे कहानी चो नहीं है, ये फेसबुक ते आईयां कुछ सत्रां उन्हां दे विचों आ, जे असी लभना चाहिए तां ये विचार आ असी की बनन नू की कीता ते की बन गए। थोड़ा वक्खरा जिहा लगूगा पर अगे सुन के शायद तुहानू ज़्यादा समझ आ सके। समा जिहड़ा लंघ गया पर उहदियां यादां हाले भी तुहाडे कोल ने, जिवें तुहाडा बचपन, तुहाडा पिंड, तुहाडा घर। पंजवीं तक जिथे स्लेट नू जीव नाल चब के कैल्शियम की कमी पूरी की, तो सलेटियां खाना शायद हर एक की पक्की आदत बनी होएगी। पढ़ाई की जिहड़ी चिंता वह पेंसिल का पिछला हिस्सा चब के काफ़ी जणे ने मिटाई होनी है। लगता तो यह भी सीगा कि किताब के विच मोर दे खंभ रखने नाल पढ़ाई वध आऊगी, इस चीज़ का तो पक्का विश्वास हुंदा सी। झोले च पईयां किताबां नूं सैट करन दी संरचना साडा रचनात्मक हुनर सीगा, भी हर कोई कापी किताब पई सोहणी लगे, कई वारी बस्ते ते अद्धा अद्धा घंटा ला देना। हर साल जदों नवीं क्लास च हुंदे तां कापियां किताबां उत्ते जिल्द चढ़ाउणा एक जीवन दा सलाना उत्सव जापदा सी, साल च आउण वाली एक वारी सैलीब्रेशन। बेबे बापू नूं साडी पढ़ाई दा कोई फिक्र नहीं सी, ते ना ही पढ़ाई दा उन्हां दी जेब दे उपर कोई बोझ। सालां दे साल लंघ जाण ते वी शायद ही कईआं दे बेबे बापू स्कूलां च पैर पाए होणगे जां गए होणगे मगर उन्हां दे। एक दोस्त नूं डंडे ते भालणा ते एक नूं साइकल दे कैरियर ते, तो इदा पता नहीं किन्नियां ने किन्ने रिश्ते नापे होने, बस हुण याद नहीं, कुछ धुंदलियां जिहियां यादां ने। स्कूल च मास्टरां तो कुट खाणी ते मुर्गा बणदे होए साडी ईगो ने सानू कदी परेशान नहीं करना। ईगो परेशान भी किदां करे, उदों पता ही नहीं सी ईगो हुंदी की है। मार कुटाई साडी रोजाना जिंदगी दी सहज ही एक अजिही प्रक्रिया सी, कुटन वाला भी खुश सी ते कुट खाण वाला भी खुश सी। कुट खाण वाला इसलिए सीगा कि कुट घट पई, कुटन वाला इसलिए खुश सीगा कि हाथ साफ कर लिया, खास करके फटियां नाल लड़ाई। ते ना ही असी दस सके कि असी बेबे बापू नूं किन्ना प्यार करदे हां, क्योंकि सानू बेबे बापू नूं आई लव यू नहीं ना कहना आउंदा। ते हुण ध्यान मारियो हां, कोई लैंडलॉर्ड है, कोई मिलियनेयर है, कोई ट्रक चलाउंदा, कोई टैक्सी, किसे दा अपना बिजनेस है, किसे दियां अपनियां टैक्सियां, किसे दा अपना कारोबार। जे पिछे कदी झात मारो तां डिगदे संभलदे संघर्ष करदे दुनिया का हिस्सा बन चुके तुसी। कुछ तो मंजलों ते पहुँच गए ने, कुछ हले रस्तियां दे साथी ने, ते कुछ ना कुछ किते ना किते गवाच गए ने। असी दुनिया च हुण किते भी होईए पर सच यह है कि सानू हकीकतां ने पालिया, असी सच दी दुनिया च ज्यों रहे सीगे। हुण वी आले दुआले कदी ध्यान मारियो, अखां बंद करियो, पहले ख्याल शायद उहो ही बचपन वाले आउणगे, हसदियां खेडदियां दे, तुरदियां फिरदियां दे, चेडां करदियां दे, शरारतां करदियां दे, कुट खांदियां दे, लड़दियां दे, झगड़दियां दे, माँ बाप दे नाल हसदियां दे, तंग करदियां दे, किन्ने ही पल जिहनूं तुसीं सच दी दुनिया कह सकदे हो। आपो अपनी किस्मत दे नाल दो हाथ करदे अज भी असी सुपना बोल रहे हैं।
ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਬੁਣਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਵੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਕਰ ਆਏ ਹੋ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਸੀ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਸੀ, ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਰਤ ਆਵੇ। ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰਤ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫਰੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੀ ਉੱਠੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਉਸ ਬਚਪਨ ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਕੋ ਨਾ, ਜਿੱਦਣ ਬੱਚੇ ਬਣਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਜਿਓ। ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੰਢਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਚੇਤਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਰੇ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟ ਉਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਈਗੋ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਈਗੋ ਵਾਲੀ ਕੰਧ ਨਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਆਪ ਹੀ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਖੇਡਣ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਫੋਨ ਨਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬੰਦਾ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਸੇਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹੀ ਬਚਪਨ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਬਚਪਨੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੋਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੋ, ਸੱਚ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੇਅੰਤਜੀਤ ਹੋਣਾ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਹੋਣਾ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।

0: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नूं उनां दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसीं एथे इंडियन मसाले दालां ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते लै सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।
1: मेलबर्न दे साउथ ईस्ट इलाके दे सारे बिल्डर्स ते ब्रिक लेयर्स लई खुशखबरी। तुहाडी हर बिल्डिंग दे स्ट्रक्चर दी एक मजबूत नींव अते दमदार पहचान देण लई आ गए ने ओज लिंटल्स। ओज लिंटल सप्लाई करदे ने सारे साइजेस दे गैल्वनाइज्ड ब्रिक लिंटल, टी बार्स, इक्वल एंड अनइक्वल एंगल्स। असी करा दे विच स्टील फैब्रिकेशन सप्लाई अते इंस्टॉल वी करदे हां। कॉन्टैक्ट 0423-102-900। ईमेल sales@ozlintels.au। Orbit Homes अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लई बनाउंदे ने उनां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स Orbit Homes अपने 44 वर्यां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24-month प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो Orbit Homes डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते
2: 0433-280-252। रेडीमेड गोल्ड डायमंड ते सिल्वर ज्वेलरी दे नाल नाल आपा बनवा सकदे हां कस्टमाइज्ड ज्वेलरी भी। तुन्ना ज्वेलर्स 99 मेन रोड वेस्ट सेंट एल्बन्स अते 341 लॉन्सडेल स्ट्रीट डेंडीनोंग। फॉर मोर इन्फो कॉल 0499-2535-45 ते।
3: ACMI ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਲਮ, ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਸ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਫੈਡ ਸਕੁਐਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੁਫਤ ਦ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਦ ਮੂਵਿੰਗ ਇਮੇਜ ਤੇ ਜਾਓ, ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਪੜਚਾਲ ਕਰੋ। 2-5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਲੇ ਸਕੂਲ ਕਮ ਐਂਡ ਪਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਜੋ ਐਪ ਪੜਚਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇਖੋ, ਦੁਕਾਨ ਬਰਾਊਜ਼ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੈਫੇ ਵਿੱਚ ਕੌਫੀ ਲਓ। ACMI.net.au ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
4: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਓਏ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
5: ਹਾਂਜੀ ਰੇਡੀਓ
6: DJ ਹਾਂ DJ ਹਾਂ
7: ਓਏ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਪੱਕ ਗਏ ਨੇ।

0: सोना चाहिदा,
1: परोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बाईबैक वी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042।
2: JBCO Films लेके आए ने एक्शन, इमोशन अते फुल ऑन एंटरटेनमेंट। पंजाबी फीचर फिल्म शेरा,
3: 5 साल बाद मुड़िया शेरे, ते मुड़िया भी केड़े हालत च।
4: स्टारिंग परमीश वर्मा, सोनल चौहान, योगराज सिंह, मानव विज अते होर भी उगे कलाकार।
5: मैं उठों भी मुड़ के जिथों कोई नहीं मुड़ के।
2: Written and directed by Savio Sandhu, produced by Anmol Sahni.
4: Hun vekhna na bhulyo 15 mai ton tuhade nedle cinema gharan vich.
6: Wow, teri sabzi di khushbu ate taste vich kuch ta kamal hai. Mainu vi dass de secret.
7: Amrit, eh kamal hai Gold Leaf Dairy de pure New Zealand ghee da. New Zealand vich free range grass fed gawan de dudh to taiyar. Na ta is vich oil, na hi koi color, hormones ya antibiotics. Bilkul pure hai ki plastic de dabbyan ch nahi, balki glass container ch pack.
6: तुसे भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
8: पेंजी की हाल है पेट दर्द दा?
9: जदो दा स्लीप एंड रिलैक्स दा इंडियन स्टाइल रूम वाला गद्दा खरीदया, सब कुछ ठीक है। थैंक यू बारे दसन लई।
8: और सुनो, हुन स्लीप एंड रिलैक्स हर तरह दे गद्दियां दे नाल बेड भी बनाउंदे ने। स्लीप एंड रिलैक्स दा एक स्टोर लेवेटन नॉर्थ अते दूजा नवा स्टोर ओहंस रोड एपिंग विच भी है। मनपसंद गद्दियां अते स्टोरेज बेड खरीदन लई कॉन्टैक्ट करो। स्लीप एंड रिलैक्स, वेक अप फीलिंग टोटली रेस्टेड। सर्च अस ऑनलाइन और कॉल 0433465492। हां जी हां।

0: होए।
1: टेंशन निरी टेंशन
2: की होया
1: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
2: काका जी टेंशन छड़ो फोन चको कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
1: या 90-77-93
2: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au।
1: याद रखो 9077-9733
2: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
1: हर कदम तुआडे नाल।
3: की होया इनी टेंशन क्यों लेती हुई है
4: यार? की दसा मॉर्गेज दा काम आज भी नहीं बनया।
3: आज सिम्मी भैन जी आए सी उन्होंने अपना मॉर्गेज UV फाइनेंशियल सर्विसेज तो ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲਿੱਤਾ।
4: ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ।
3: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਰੀਫਾਈਨਾਂਸ, ਕਾਰ ਲੋਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਨੀ ਅਦਰ ਲੋਨ ਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਫਰੋਮ UV ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਟ 0430-8383-11 ਔਰ ਵਿਜ਼ਿਟ uvfinancial.com.au। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਤਾਂ AI ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਖੁਦ ਕਿਉਂ? ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਡਿਲੇ ਇਨ ਲਾਅ ਇਜ਼ ਡੈਮੇਜ ਇਨ ਲਾਈਫ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लई कर देनी बंसल लॉयर्स। तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।

0: ओह मारे गए, दोबारा देर हो गई। गड्डी चलाउन विच्चों तना नूं बाहर कड्डो अते घरों पहला ही तुर पाओ। जे तुसी गति सीमा तो तेज गड्डी चलाउंदे हो तां तुसी कानून नूं तोड़ रहे हो अते तुहानूं महंगा जुर्माना हो सकता है जां अपना लाइसेंस गुआ सकते हो। TSC वल्लों सुनेहा, हर किसी वास्ते सुरक्षित तरीके नाल गड्डी चलाओ।
1: रोज रोज शॉपिंग हुंदियां ने, पता नहीं केड़ा देवता राजी कीता इन्होंने।
2: सूरज देवता
1: की मतलब?
2: ओ कमलिए, सन करंट वालियां तो ज्यादा इन्होंने सोलर पैनल लगवाया ता इन्हां दी सेविंग्स वध गई।
1: मैनू नहीं पता, आपा भी सोलर पैनल लगवाना है हुणे।
2: तुसी भी करो बचत ते लगवाओ सोलर पैनल। कॉल सन करंट 0448-066-494 ते। सालां तो बेस्ट सर्विस लई एक ही नाम सन करंट। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ $200 दा डिस्काउंट भी।
3: यार तू इत्थे इन्नी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ये है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मैनू PR दी राह भी विखाई। इन्ना ही नहीं, ये स्टूडेंट वीजा, AAT अपील्स, स्किल्ड वीजा, PR, US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 ते या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
5: हां जी,

0: ब्रोकर्स। अपनी इंश्योरेंस की हर लोड़ ले, याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा। कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू। ऑर्बिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उनां दे सुपनिआं दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वरियां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 04-33-280-252
1: रोज रोज शॉपिंग हुंदिया ने पता नहीं केड़ा देवता राजी कीता इन्हां ने।
2: सूरज देवता
1: की मतलब?
2: ओ कमलिए सन करंट वालियां तो जद्दा इन्हां ने सोलर पैनल लगवाया ता इन्हां दी सेविंग्स वध गई।
1: मैनू नहीं पता आपां भी सोलर पैनल लगवाना है हुणे।
2: तुसी भी करो बचत ते लगवाओ सोलर पैनल। कॉल सन करंट 0448-066-494 ते सालां तो बेस्ट सर्विस लई एक ही नाम सन करंट। देओ रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ $200 दा डिस्काउंट भी।
3: पांडे जी क्या तू साला लक पाए हो यार, एक दोस्त के साथ पकड़े गए और दूसरी दोस्त छुड़ाने चली है और ये तीसरी दोस्त ही है ना।
0: देखिए प्रजापति पांडे, उनकी श्रीमती एंड अदर्स, इन पति पत्नी और वो दो 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में।
4: विश्व पद्धर ते तेल दी काट सानू सब नु प्रभावित कर रही है। सरकार कोल एक राष्ट्रीय तेल सुरक्षा योजना है अते असी इस वेले दूजे पद्धर ते हां। अपनी कार दी घट अते वधेरे कुशलता नाल वरतों ट्रक ड्राइवरां किसानां अते जरूरी सेवावां लई तेल बचाउण विच मदद करदी है। हर छोटी कोशिश मददगार है। fuelplan.gov.au/punjabi ते जाओ। ऑस्ट्रेलिया सरकार कैनबरा वालों जारी।
5: भैन जी की हाल है पिट दर्द दा?
6: जदों दा स्लीप एंड रिलैक्स दा इंडियन स्टाइल रूम वाला गद्दा खरीदया सब कुछ ठीक है। थैंक यू एदे बारे दसन लई।
5: और सुनो हुन स्लीप एंड रिलैक्स हर तरह दे गद्दियां दे नाल बेड भी बनाउंदे ने। स्लीप एंड रिलैक्स दा एक स्टोर लेवेटन नॉर्थ अते दूजा नवा स्टोर ओहंस रोड एपिंग विच भी है। मनपसंद गद्दियां अते स्टोरेज बेड खरीदन लई कॉन्टैक्ट करो स्लीप एंड रिलैक्स। वेक अप फीलिंग टोटली रेस्टेड। सर्च अस ऑनलाइन और कॉल 04334654 92।

0: होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लिए बनाउंदे ने उना दे सपने आदा एक मजबूत कर हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानु दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नु 0433-280-252 ते 0433-280-252 ते
1: किचन दा स्टाइल डल लगदा बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया हुन टेंशन खत्म करो आ गया ZJ स्टोन मेसन फाडे घर नु बनाए एकदम क्लासी असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन
2: JBCO Films लेके आए ने एक्शन इमोशन अते फुल ऑन एंटरटेनमेंट पंजाबी फीचर फिल्म शेरा
3: 5 साल बाद मुड़िया शेरे ते मुड़िया भी केड़े हालत च
4: स्टारिंग परमीश वर्मा सोनल चौहान योगराज सिंह मानव विज अते होर भी उगे कलाकार
5: मैं ओथों भी मुड़ के जत्थों कोई नहीं मुड़ के
2: Written and directed by Savio Sandhu. Produced by Anmol Sahni.
4: Un vekhna na bhullyo 15 mai to tuhade nedle cinema ghar vich.

होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उन्हां दे सुपनिआं दा इक मजबूत घर हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 04332802552 ते

मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले दाला ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते ले सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394 दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।

इंश्योरेंस ब्रोकर्स। अपनी इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा। कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू।

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की होया
0: अथे इमिग्रेशन दे एने पंगे ने यार मुकदे नहीं
1: काका जी टेंशन छड़ो फोन चको कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
0: या 90-77-93
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तुहाडे नाल।
2: हां जी हां जी ओए हां जी हां जी
3: हां जी।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। इन्ना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406 660 960 दे या फिर विजिट करो बंसल इमीग्रेशन.com।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत एक कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: रोज रोज शॉपिंग हुंदियां ने, पता नहीं केड़ा देवता राजी कीता इन्हां ने।
3: सूरज देवता
2: की मतलब?
3: ओ कमलिए, सन करंट वालियां तो ज्यादा इन्हां ने सोलर पैनल लगवाया ता इन्हां दी सेविंग्स वध गई।
2: मैनू नहीं पता, आपा भी सोलर पैनल लगवाना है हुणे।
3: तुसी भी करो बचत ते लगवाओ सोलर पैनल। कॉल सन करंट 0448-066-494 ते। सालां तो बेस्ट सर्विस लई एक ही नाम सन करंट। देओ रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ $200 दा डिस्काउंट भी।

कुछ यहोजा गीत जिन्हों तुसी अपने दिल दे विच जगह दिती है ते कुछ नवीं गल्लां क्योंकि जिहड़ी आर्टिस्ट की होंद है जिहड़ी मनमोहन वारस की होंद है कमल हीर की होंद है अपने आप च कुछ नहीं हैगी सिर्फ गीतां करके है जिहड़े गीत ने असीं गाए हुए उन्हां करके साडी पहचान है उही अपनी पहचान थोड़े रूबरू करन जा रहे हैं आज शुरू करिए फिर आओ जी

0: रोज रोज शॉपिंग हुंदिया ने, पता नहीं केड़ा देवता राजी कीता है इना ने।
1: सूरज देवता
0: की मतलब?
1: ओ कमलिए, सन करंट वालिया तो जदा इना ने सोलर पैनल लगवाया ता इना दी सेविंग्स वध गई।
0: मैनू नहीं पता, आपा भी सोलर पैनल लगवाना है हुणे।
1: तुसी भी करो बचत ते लगवाओ सोलर पैनल। कॉल सन करंट 0448-066-494 ते। साला तो बेस्ट सर्विस लई एक ही नाम सन करंट। देओ रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ $200 दा डिस्काउंट भी।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हाँ जी हाँ जी।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: की चाहिदा, ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा? मिल जुगा, सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस। ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक भरोसे योग ना, जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील करदे ने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490054596। गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस.com.au ते जाओ। आओ थोड़ा कोई हल करिए।

आप समझ तो गए होंगे कि मैं समझाऊं। हाँ बोलो, मेरा ख्याल समझ गए। हाँ चलो अच्छी बात है। है हुस्न का फुसूं भी इलाज फिसुलदगी, रुख से नकाब उठा कि तबीयत उदास है। हुस्न वाले को कहा जा रहा है कि ये इलाज है फसुलदगी का, बेचारगी का, बीमारी का। बेचारगी बीमारी को नहीं कहते, लेकिन बेचारगी और कई तरह की होती है। हाँ उसका इलाज भी है इसमें।

जाना मन कोए पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावे दरगे मान पंचे सोहे दर राजान पंचा का गुर एक त्यान जे को कह करे विचार करते कह करना नाही सुमार तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत जे को बुझै होवै सचियार तौलै उपर केता पार धरती होर परै होर तिस्ते पार तलै कमन जोर जी जात रंगा के नाव समना लिखिया बुढ़ी कलाम ए लेखा लिख जाने कोय लेखा लिखिया केता होय केता तान स्वाल्यो रूप केती दात जाने कवन कूत की ताप

एक बार जो तुझ पावे साई पली का, तू सदा सलामत निरंकार, असंख जाप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पाक सार, असंख मोन लिव लाए तार, कुदरत कौन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावे साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूर्ख अंध कोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवट हत्या कुमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कुड़ियार कूड़े फिराहे, असंख मलेच मल पाक खाए।

वक्त न पाया का दिया जे लिखन ले कुरान हितवार ना जोगी जाने रुत महा ना कोई जां करता सिर ठीक हो साजे आपे जाने सोई केव कर आखा केव सलाही क्यों वरनी केव जाना नानक आखन सब को आख है एक दू एक सियाना वड्डा साहेब वड्डी नाई कीता जा का होवे नानक जे को आपो जाने अगे गया न सो है पाताला पाताल लख आकाशा आकाश ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहन एक वात सैंस अठारा कहन कतेबा असलू एक तात लेखा होए ता लिखी है लेख होए विनाश नानक वड्डा आखिया आपे जाने आप साला ही साला एती सुरत न पाईया नदियां अत्ते वाह पवे समुंद न जानिया समुंद सा सुल्तान गिरिया सेती माल तन कीड़ी तुल न होनी जे तिस मनो न विसरे अंत न सिफती कहन न अंत अंत न करने दे न अंत अंत न वेखन सुनन न अंत।

ना पाए जाए। ए अंत न जाने कोए, बहुता कई है बहुता होए, वड्डा साहेब ऊंचा थाओ, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ, एवड ऊंचा होवे कोए, तिस ऊंचे को जाने सोए, जेवड आप जाने आप, नानक नदरी करमी दात, बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तुमाए, केते मंगे जोत अपार, केत्या गंत नहीं विचार, केते खप टुटे वेकार, केते लै लै मुकर पाहे, केते मूर्ख खाई खाए, केतिया दुख भूख सदमार, ए भेदात तेरी दातार, बंद खलासी पाने होए, और आख न सके कोए, जे को खाए क आखन पाए, ओ जाने।

ना कथने जाए, ना ओ मरे ना ठागे जाए, जिन कह राम वसै मन माहे, जिथे भगत वसे के लोए, करे आनंद सच्चा मन सोए, सचखंड वसे नंकार, कर कर वेखे नदर निहाल, तिथे खंड मंडल वर भंड, जे को कथे

आप श्रीमुख वाग्पाद सहित स्वी छपे चंतो प्रसाद चक्र चेनी हर वर्ण जाति हर पात निंजय रूप रंग हर रेख पे को कह न सकत कह अचल मूर्त अनुभव प्रकाशम तो कह जय कोट इंद्र इंद्रान सा सहान गणित जय तिर भवन में सुर नार्य सुर नेत नेत मंत्र कहत तब सर्व नाम कथे कवन कर्म नाम वर्ण सुमत जांग प्रिया छंद नमस्तंग अकाले नमस्तंग कृपाले नमस्तंग रूपे नमस्तंग अनूपे नमस्तंग अभेखे नमस्तंग अलेखे नमस्तंग अकाये नमस्तंग अजाये नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अभंजे नमस्तंग अडामे नमस्तंग अठामे नमस्तंग अकर्मंग नमस्तंग अतर्मंग नमस्तंग अनामंग नमस्तंग अतामंग नमस्तंग अजीते नमस्तंग अभीते नमस्तंग अभाये नमस्तंग अडाये नमस्तंग अनिले नमस्तंग अनादे नमस्तंग अछेदे नमस्तंग अगाजे नमस्तंग गंजे नमस्तंग भंजे नमस्तंग उदारे नमस्तंग अपारे नमस्तंग सुएक नमस्तंग अनेक नमस्तंग अभूते नमस्तंग अजूपे नमस्तंग निर्कर्मे नमस्तंग निर्भर्मे नमस्तंग निर्देशे नमस्तंग निर्भेषे नमस्तंग निर्नामे नमस्तंग निर्कामे नमस्तंग निर्धाते नमस्तंग निर्घाते नमस्तंग निर्दूते नमस्तंग अभूते नमस्तंग अलोके नमस्तंग अशोके नमस्तंग निर्तापे नमस्तंग अथापे नमस्तंग त्रिमाने नमस्तंग निदाने नमस्तंग अगाये नमस्तंग अबाये नमस्तंग त्रिवर्गे नमस्तंग असर्गे नमस्तंग प्रभोगे नमस्तंग संयोगे नमस्तंग अरंगे नमस्तंग अभंगे नमस्तंग अगमे नमस्तरमे नमस्तंग जलाश्रे नमस्तंग निराश्रे नमस्तंग अजाते नमस्तंग अपाते नमस्तंग अमजवे नमस्तस्त अजवे अदेशंग अदेशे नमस्तंग अभेशे नमस्तंग नितामे नमस्तंग निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वद्याले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभू नमो सर्व खापे नमो सर्व थापे नमो सर्व काले नमो सर्व पाले नमस्तस्तु देवे नमस्तंग अभेवे नमस्तंग अजन्मे नमस्तंग सुबन्मे नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे नमो सर्व रंगे नमो सर्व पंगे नमो काल काले नमस्तस्तु द्याले नमस्तंग अवर्णे नमस्तंग अमरणे नमस्तंग जरारंग नमस्तंग कृतारंग नमो सर्व दंदे नमो सत वंदे नमस्तंग निर्साके नमस्तंग निर्भाके नमस्तंग रहीमे नमस्तंग करीमे नमस्तंग अनंते नमस्तंग महंते नमस्तत रागे नमस्तंग सुहागे नमो सर्व सोखंग नमो सर्व पोखंग नमो सर्व कर्ता नमो सर्व हर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्व दयाले नमो सर्व पाले चात्री चांतो प्रसाद अरूप है अनूप है अजू है अभू है अलेख है अभेक है अनाम है अकाम है अदय है अभय है अजीत है अभीत है त्रिमान है निदान है त्रिवर्ग है असर्ग है अनिल है अनाद है अजय है अजाद है अजन्म है अवर्ण है अभूत है अभर्ण है अगंज है अभंज है अजूज है अजंज है अमीक है रफीक है अदंध है अबंध है निर्बूज है असूज है अकाल है अजाल है अला है अजा है अनंत है महंत है अलीक है निरश्रीक है निर्लभ है असंभ है।

प्रेत अप्रेत देवे सुतर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साहंग नमो पूपे नमो दान दाने नमो मान मानंग नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नानंग नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग सदा सच्चिदानंद सर्वमुख प्रणाशी अनूपे अरूपे समस्तल निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा बिर्द करदा अधो उर्द अर्दंग अगग उग हरता परं परं परमेश्वरं प्रोचपालं सदा सर्वदा सत दाता दयारं अछेती अपेदी अनामं अकामं समस्तो पराजी समस्तस्ततामं तेरा जोर चातुरी छंद जलय है थलय है अभीत है अभय है प्रभु है अजू है अदेश है अवेश है प्रियंपुरा छंद गादे अबादे आनंदी स्वरूपे नमो सब माने समस्ति निदाने नमस्तंग निनाथे नमस्तंग परमाथे नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अभंजे नमस्तंग अकाले नमस्तंग अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साहे नमो माय माय नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोगे नमो शोक शोके नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो सर्व तानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व दिशंग नमो सर्व कृष्ण नमो सर्व रंगे त्रभंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखजे अभजे समस्तंग प्रसजे कृपालंग स्वरूपे कुकर्मंग पनासी सदा सर्वदारिद सिद्धंग निवासी चार परिचान तो प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अलख जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल तर्मंग अलख कर्मंग सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुक्ता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुहाल छंद तो प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त अजोन पुरख अपार सर्व मंत्र मान देव अभेद आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुनकाल जत तत विराज ही अब दूत रूप रसाल नाम ठाम ना जात जाकर रूप रंग ना रेख आद पुरख उदार मूर्त अजोन आद से देश अर न पेश जाकर रूप रेख न राग जात्र तात्र दिशा विशा हो फैलो न राग नाम काम बहिर पेख ताम हो न जाए सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मानताए एक मूर्त अनेक दर्शन किन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव पेव न जानी जय बेद हरक तेव रूप रंग न जात पासो जानी कह जेव तात मात न जात जाकर जनम मर महीन चक्र बकर फिरे चतर चक मान ही पुरतीन लोक चौदह के बिखे जग जाप ही जय जाप आद देव अनाद मूर्त थाप सब जय थाप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रस्त्यो सुजंबव गण पंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख देश धर्म ताम सो परम रहत अपूत अलख अपेक अंग राग न रंग जाके जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुकदा एकाम आव रूप अमीक अनुस्तुत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप असूत अंगहीन अभांग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपाल सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपे सर्व शास्त्र जानी जय रूप रंग रेख परम वेद पुराण जाके नेत पाकत नेत कोट सिमृत पुराण शास्त्र न आवे ही वो चित मदभार छंद तो प्रसाद गुण गानुदार मैं माया पार आसान अभंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निस्दिन अनास।

कालांकार अनुभूत अंग अभावंगत में तपार गुण गण उदार मुन गण बरनाम निर्भय निरकाम अद्भुत प्रचंड मित गत अखंड आलक्ष्य कंस आदि श्री धर्म सर्वां वर्णांडिये अंडंड भांडिये चाचरी चंतो प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंकरियम निर्नामे अकामे यंग प्रिया छंद चतर चक्र कर्ता चतर चक्र हर्ता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मानिए चतर चक्र जानिए चाचरी छंद न सत्रे न मित्रे न परमंग न पित्रे न कर्मंग न काये अजन्मंग अजाये न चित्रे न मित्रे पर है पवित्र प्रतिशय अधिशय अदृशय अकृशय भगवती छंतो प्रसाद कथते के आछे जदेश के आभेज भेषय के आगाज कर्म के आभंज भरम के आभेज लोक के आदित शोक के अवधूत वर्ण के बेपूत करण के राजम प्रवाह के धर्म तुजा है के आशोक वर्ण के सर्वा अवर्ण के जगतंग कृति है के छत्रंग छत्री है के ब्रह्मंग स्वरूपे के अनुपव अनुपे के आद अदेव है के आप अभेव है के चक्रंग बहीन है के एक अधीन है के रोजी रजा के रही में रहा कह के पाक बे अब है के गैबिल गैब है के अफल गुना है के साहल सुना है के कारण कुनंद है के रोजी दहंद है के राज ग्रहीम है के कर्मंग करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मानिए के सर्वत्र दानिए के सर्वत्र गौणे के सर्वत्र पौणे के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पेशे के सर्वत्र राजे के सर्वत्र साजे के सर्वत्र दीने के सर्वत्र लीने के सर्वत्र जाओ के सर्वत्र भाओ के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पेशे के सर्वत्र काले के सर्वत्र पाले के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजय के सर्वत्र राज्य के सर्वत्र शोक है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण के सर्वत्र प्राण के सर्वत्र देश के सर्वत्र पेश के सर्वत्र मानिय सदैव प्रदानीय के सर्वत्र जापिया के सर्वत्र थापिया के सर्वत्र पान के सर्वत्र मान के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र के सर्वंग कलीम के परमंग फहीम के अकाल अलाम के साहिब कलाम के हुसन वजू है तमामल रजू है हमेशा सलाम सली खुदा में गनी बुल शिकस्ते गरी बुल परस्ते बुलंदर मुकाने जमीन उल जुमाने तमीजुल तमामे रजूअल निदाने हरीफुल अजीमे रजाय यकीने अनेकल तरंग है अभेद है अभंग है अजीजुल निवाज है गनी मुल खिराज है निरकस स्वरूप है त्रिमुक्त भूत है प्रभगत प्रवाह है सो जुग सुदा है सदैव स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्वसाज है समस्तल सलाम है सदैवल कलाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओं आद रूप है अनाद स्वरूप अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभर्गन त्रिवादे अगजे अगाधे सुभंग स्वरूपागे सो सर्वान रागे त्रिपुगत स्वरूप है अछज है छूत है कि नरकम परनाश है पृथुल परवास है निरकत परवाह है सदैव सदा है बेपुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है निरकत सदा है बेपुगत परवाह है अनुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है चाचरी छंद अभंग है अनंग है अभेक है अलेख है अभर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अभूत है अधूत है अनास है उदास है अधंध है अभंध है अभक्त है विरक्त है अनास है प्रकाश है अनचिंत है सुनित है अलिख है अधिक है अलेख है अभेक है अडा है अगा है असंभ है अभंग है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजात है चारपड़ चंतो प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग कर्मंग सर्वंग धर्मंग सर्वंग जुक्ता सर्वंग मुक्ता रुआल चंद तो प्रसाद नमो नर गनासे सदैव प्रगासे अनंग स्वरूपे अभंग भूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्बाध भूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते निर्साग शरीक है अमितो अमिक है सदैव परवा है अजय है अजा है भागवती छंद तो प्रसाद के जाहिर जहूर है के
ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਮੇਸ਼ਰ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਸਮਸਤਲ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿਰਾਗ ਹੈ, ਕਿ ਕਾਮਲ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਕਿ ਰੋਜੀ ਦਹੰਦ ਹੈ, ਕਿ ਰਾਜ ਕਰਹੰਦ ਹੈ, ਕਰੀਮੁਲ ਕੁਮਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਹੁਸਨ ਜਮਾਲ ਹੈ, ਗਨੀਮੁਲ ਖਰਾਜ ਹੈ, ਗਰੀਬੁਲ ਨਿਵਾਜ ਹੈ, ਹਰੀਫੁਲ ਸਕਨ ਹੈ, ਹਿਰਾਸਲ ਫਕਨ ਹੈ, ਕਲੰਕਮ ਪਰਨਾਸ ਹੈ, ਸੁਮਸਤਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਅਗੰਜਲ ਗਨੀਮ ਹੈ, ਰਜਾਇਕ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਸੁਮਸਤਲ ਜੁਬਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਰਾਹ ਹੈ, ਕਿ ਨਰਕਮ ਪਰਨਾਸ ਹੈ, ਬਿਸਤਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਬਰ ਗਵਨ ਹੈ, ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਵਨ ਹੈ, ਤਮਾਮ ਤਮੀਜ਼ ਹੈ, ਸਮਸਤਲ ਅਦੀਸ ਹੈ, ਪਰਮ ਪਰਮ ਈਸ ਹੈ, ਸਮਸਤਲ ਅਦੀਸ ਹੈ, ਅਦੇਸਲ ਅਲੇਖ ਹੈ, ਅਭੇਸਲ ਅਭੇਖ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਜੁਮਾ ਹੈ, ਅਮੀ ਕੁਨੁਮਾ ਹੈ, ਕਰੀਮਲ ਕੁਮਾਲ ਹੈ, ਗਜੁਰ ਜਮਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਅਚਲੰਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਕ੍ਰਮਿਤੋ ਸੁਭਾਸ ਹੈ, ਕਿ ਅਜਬ ਸਰੂਪ ਹੈ।

गुणगन मुदाम हर बर अगंज हर नर प्रभंज अन गण प्रणाम मुन मन सुनाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनभव अनास मुन मन प्रगास गुणगन प्रणाम जलथन मुदाम अनछिज अंग आसान अभंग उपमा पार गत मित उदार जल थल अमंड दिसविस अभंड जल थल महंत दिसविस बेअंत अनपौ अनास त्रित तर तुरास आजान वा एक सदा ओंकार आदि कथनी।

अंठन अबार आडीठ तरम अत ठीठ करम अन बरन अनंत दाता मंत हर बोल मना संतो प्रसाद करनाले अर काले है कलखंडल है मैं मंडल है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ववारण है धृत के तरण है जग के करण है मनमानी है जगजानी है सर्वंकार है सर्वंकार है सर्वपाशी है सर्वनाशी है करुणाकर है विश्वम्भर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है कलखंडस है परते पर है करुणाकर है अजपाजप है अतपातव है अकृताकृता है अमृतामृता है अमृतामृता है करुणाकृत है अकृताकृता है तरणी तृत है अमृतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृत है अजबाकृत है अमृतामृत है नर नायक है कलकायक है विश्वम्भर है करुणालय है निर्मनायक है सर्वपायक है भाव पंजन है अर्गंजन है रवतापन है जब जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ताकर है हरताहर है परमात्मा में सर्वात्म में आत्म बस है जस के जस है पुजांग पुरा छंद नमो सूर सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्र नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बिंदे नमो बीज बीजे नमो राज संताम शंख शांत रूपे नमो परंग ततंग अतंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो त्यान त्याने नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पोज पोजे नमो पान पाने नमो कले कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनाद भूते कलंकार रूपे अकलंकार लंके नमो आसे आसे नमो भांग भंके अभंगी स्वरूपे अनंगी नामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी कामे एक अश्री छंद अजय अलय अभय अभय अभू अजू अनास अकाश अगंज भंज अलख पख अकाल दयाल अलेख अभेख अनाम अकाम अगा अडा अनाथे परमाथे अजूनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अभर्मंग अगजे अलेखे प्रियांग प्रजा छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तर प्रनासे अगंजन अनामे समस्तल निवासे निर्कामंग बभूते समस्तं स्वरूपे कुकर्मंग प्रनासी सोतर्मंग प्रभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रनासी करीमल कुरंदा समस्तल निवासी अजायब बभूते गजायब गनी में हरियंग करियंग करीम रही में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुयंबं सुमंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग भूते दुकालंग प्रनासी दयालंग स्वरूपे सदा

0: आयो नहात फिरयो लिए सात समुंदरन लोग गयो पर लोग गो आयो बास कियो बखियान सो बैठ कै ऐसे ऐसे वैस बतायो साच कहो सुन लियो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो कहूं ले पायन पूतरियो सिर कहूं ले लिंग ले ढलकायो कहूं लिखियो हर अवाच दिशा में कहूं पुछा को सी सुनवायो को बुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो कूड क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो कूड क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो।
1: कवियो बाज बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरण मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुट सबै तुम कावो आप हाथ दै मोय बचावो सुखी वसै मोरो परवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर इच्छा निज कर दै करिया सब बैरन को आज संगरिया पूर्ण होए हमारी आशा और भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याओ जो बर चाहो सो तुम ते पाओ सेवक सिख हमारे तारिया चुन चुन सत्र हमारे मारिया आप हाथ दे मुझे उबरिया मरण काल का त्रास नवरिया पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तुजो करियो रक्षा राख।

काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विषण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जमन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जो थियो, जमन काल सब लोक सुवारा, नमस्कार है ताए हमारा, जमन काल सब जगत बनायो, देव दैत जचन उपजायो, आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा, नमस्कार किसी को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सुवारी, शिवकन को शिवगुण सुख दियो, सतन को पलमो बद कियो, काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, टीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतम दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, काट काट के पट पट की जाने, जब उदकरख करा कर तारा, प्रजा तरत तब दे अपारा, जब आकर्ष करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ, देते बदन सृष्ट सब थारे, आप अपनी बूझ उचारे, तुम सब ही तेरे निरालम, जानत बेद भेद अल आलम, निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ, ताका मूड

महादेव को कह सदा शिव, निरंकार का चिंत नहीं पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत पिन पिन तोय तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, कहब सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग प्यो राव कई पुपा। अंडज जे राज से तजकिनी, उत्पुज खान बहु रजदीनी। कहो फू राजा हर बैठा, कहो सिमट पयो शंकर कैठा। सगरी सृष्ट दिखाए चंभव, आज जुगा स्वरूप सुजंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच करो रन काता। जे आज तो तब सरनी परे, तिन के दुष्ट दुख है मरे। पुरख जवन पग परे त्योहारे, तिन के तुम संकट सब तारे। जो कल को एक बार त्योहार है, ताके काल निकट नहीं आए है। रक्षा होए ता सब काला, दुष्ट अरिष्ट तरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे न हर हो।

0: अंतर आत्मा समाले आप छड सदा रह परना गुरबिन अवर न जाने कोए कह नानक सुनो संतो सो सिख सरमुख होए
1: जे को गुरु तेवे मुख होवे बिन सतगुरु मुक्त ना।

सब सेती मन मिलिया सच्चै लाया भाओ आपे हीरा रतन आपे जिसनु दे बुझाए कह नानक सबद रतन है।

तही गुणी संसार परम सुत्ता सुत्या रहन विहानी गुर कृपा ते से जन जागे जिन्ना हर मन वसिया बोले अमृत बाणी कह नानक सो तत पाए जिसनु अंदिन हर

0: एहड़ तेहड़ छड़ तो गुर का शब्द पछाण, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सतगुरु जुगो जुग अटल, तख्त चवर छत्र जी दे मालक, दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत, समुची मनुखता दे सांझे रहवर, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी च जुड़ बैठी गुरु रूप सार संगत जी, आओ सारे गज वज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी जो सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी तो दरगाही फरमान आया हुक्मनामा साहिब दे रूप दे विच, उस दी व्याख्या सरवण करन वास्ते गुरुद्वारा दीवान हाल मंजी साहिब विखे सुशोभित होए हो। अज तीसरे पातशाह गुरु अमरदास महाराज बख्शिश करदे है, सेखा चौ चक्या चौ वाया, खालसा जी एक इतिहासक ते प्रमाण आपां देना देवांगे, एक इतिहासक घटना है जिसनूं मुख रखदे होए सतगुरु साहिब जी ने यह शब्द उचारना कीता। जदों गोविंदवाल साहब आबाद हो गया, गुरु अंगद साहिब जी ने छड़ी दे के तोरिया सी, भूत प्रेत इस नगर नूं वसन नहीं सी दिंदे, आशीर्वाद दे के गुरु अंगद साहिब जी ने गुरु अमरदास पातशाह जी नूं तोरिया कि जाओ एक नवा नगर वसाओ। गोविंदवाल साहिब सच्चे पातशाह ने आबाद किया तीसरे स्वरूप दे विच, तीसरे जामे च गुरु अमरदास जी ने। जदों ये आबाद हो गया नगर, सतगुरां दे चरण पए, जिथे जाए वह मेरा सतगुरु सो थान सहावा राम राजे, तां जिथे होर संगतां इथे आके रहन लगियां, उथे जदों आबाद होया कुछ सेख भी आके उथे खालसा जी रहन लगे, संगतां लंगर वास्ते जल भरन लई ब्यासा दरिया ते जांदियां घड़े लै करके, तां सेखां दे जिहड़े मुंडे सी बहुते भूतरे होए सी, हंकारे होए सी, गुलेले मार के संगतां दे कच्चे घड़े सी जिहड़े उहनूं भन दिया करदे सी पाणी लैण जदों संगतां जांदियां सी ब्यासा दरिया ते। संगतां ने शिकायत कीती सतगुरां दे पास, गुरु ग्रीव नवाज सच्चे पातशाह कहन लगे भाई तुसीं मशकां लै लवो। जदों मशकां लईयां तां उदों फिर तीर कमान चुकले सेखां दे, चांबले होए खालसा जी कह लिए मुंडिया ने तीर कमान दे नाल ओ मशकां नूं फाड़ दिया करन। फिर सच्चे पातशाह ने कहा कि तुसीं

की रास संग्रह तो भाव हुंदा इकट्ठे करना, गुणा की रास संग्रह जेडे वाहिगुरु दे नाम रूपी गुणा नूं इकट्ठे करदे है। अवगुण कढे विडार, उहनां दे अंदरों भाई अवगुणा दा नाश हो जांदा है। जदों आपां गुरबाणी नूं जपांगे, सिमरन करी चलांगे, ऐटोमैटिकली अंदरों अवगुण खत्म होने शुरू हो जांदे ने। जे किसी नूं शंका होवे गुरबाणी नूं पढ़ के विचार के नाम सिमरन करके देख लवे, ज्यों ज्यों नाम सिमरन करेगा अंदरों अवगुणा दा नाश अपने आप होना शुरू हो जाएगा। फिर मन नहीं करेगा विषय विकारां वल भी, मन नहीं करेगा किसी दी निंदिया चुगली करन वल भी, मन नहीं करेगा, फिर नाम दा रस आउण लग जू। इस करके नाम दे रस विच ऐसी ताकत है जिन्हें भाई वाहिगुरु दे गुणा नूं कठा कीता, संग्रह तो भाव नाम रूपी जेड़े गुण ने उन्हां च मन नूं जोड़िया, बड़े औगुण भी उन्हां दे अंदरों नाश हो गए। गणका बेशवा सी किड्डे औगुण करदी सी, सूआ पड़ावत गणका तरी सोहर नैनो की पुत्री, ओ भाई नाम सिमरन करन करके उहदे अंदरों औगुणा दा नाश हो गया, ज्ञान दा प्रकाश हो गया। इसे तरह जेड़े गुणा दी सांझ पाउंदे ने, नाम रूपी गुणा नूं इकट्ठा करदे ने, हिरदे च अंतश करन शुद्ध हो जांदा है। बड़े बड़े औगुण अंदरों

महाराज कहिंदे मिलिया होया कौन है रब नाल, मिलिया होया ओनू कहिंदा जेड़ा अपने गुरु दा शब्द नहीं छड़दा, गुरु नू छड़ के दूजे ना धरे प्यार, दूजे तो भाव द्वैत भाव दे विच नहीं पैंदा, होर देवी देवत्यां दी पूजा दे विच नहीं लगदा, होर मड़ियां मसाणा नू नहीं मनदा, अपने गुरु नू नहीं छड़दा, ओनू आपां कहांगे ए मिलिया होया ए गुरमुख है। जे भाई गात्रा भी पाया है, कोई तिथ त्योहार आ गया दिवाली आ गई, गात्रा भी पाया है, हाथ विच कच्ची लस्सी दा डोलू लैके ते दीवा लैके तुरिया फिरदा मड़ियां दे विच प्रेतां नू पूजदा, ओनू नहीं कह सकदे भी ये मिलिया होया। नहीं भाई, ओह तां विछड़ ही होया जे भी, क्योंकि विछड़िया होया क्यों है, क्योंकि जो पंजां प्यारिया ने अमृत छकाउण वेले वचन कीता सी उहते पहरा नहीं दे रहे आ। सो इस करके फिर जुड़ूगा किवें, अरदास बेनती करके, अरदास दे बीज विच्चों भगती दा फल निकलदा खालसा जी। इस करके आओ, नानक मिलिया सो जानिया, ओ मिलिया जाणो जिहड़ा गुरु नहीं छड़दा, अपना गुरु दे नाम नूं नहीं छड़दा, ते होर मड़ियां मसाणा भूत प्रेतां आदकां दी पूजा देवी देवत्यां दे नाल प्रेम नहीं करदा, केवल ते केवल नाम नाल प्रेम करदा, ओनू मिलिया जाणो।

नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आपका पुण्य दर्शन में। मैं हूं आपका दास। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। मित्रों, आपको क्या अट्रैक्ट करता है? भगवान का नाम या दुनियादारी का शोर? एक बार एक शहर में दो जगह भीड़ लगी हुई थी। पहली जगह एक मंदिर में सुंदर कीर्तन चल रहा था, मृदंग बज रही थी, लोग हरे कृष्णा महामंत्र गा रहे थे, झूम रहे थे, वातावरण बहुत शांत और आनंदमय था, किंतु वहां गिने चुने लोग ही बैठे थे। और दूसरी तरफ सड़क के कोने पर दो लोग जोर जोर से लड़ रहे थे, कोई मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहा था, कोई चिल्ला रहा था, अरे रुको रुको, आगे क्या हुआ। कुछ ही मिनटों में वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। अब प्रश्न ये है, ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर जानने का प्रयास करते हैं छोटे से अंतराल के बाद।

पुण्य दर्शन सुन रहे हैं आप अपने दास के साथ। तो मेरा ये प्रश्न था कि आखिर इंसान का मन शांति से ज्यादा शोर की तरफ, भक्ति से ज्यादा विवाद की तरफ और पॉजिटिविटी से ज्यादा नेगेटिविटी की ओर जल्दी क्यों भागता है। दरअसल साइकोलॉजी में इसे नेगेटिविटी बायस कहा जाता है। हमारा दिमाग नेगेटिव चीजों को बहुत जल्दी पकड़ता है, क्योंकि हजारों साल पहले इंसान को जीवित रहने के लिए खतरों पर तुरंत ध्यान देना पड़ता था। लेकिन आज वही आदत हमारे मन को परेशान कर रही है। आज अगर हम सोशल मीडिया पर कोई अच्छा प्रवचन डाल दो तो शायद ही कुछ लोग देखें, किंतु किसी का विवाद, कोई कंट्रोवर्सी या कोई इंसल्ट वाली वीडियो डाल दो तो कुछ ही घंटों में वायरल हो जाती है। क्योंकि बाहर की नेगेटिविटी हमारे अंदर की अशांति को फीड करती है। मित्रों, इसके बारे में भगवान भगवत गीता में बहुत सुंदर बताए हैं। क्या है वो बात, बताता हूं थोड़ी देर में। मैं यूं गया यूं आया।

किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो, आ गया ZJ स्टोन मेसन, फाड़े करनु बनाए एकदम क्लासी, असी बनाने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल, हुन ना सिर्फ कर पर तुहाड़ी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410 045 555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।

पुण्य दर्शन में पुनः आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में बहुत गहराई से समझाया है, काम, क्रोध और लोभ ये तीन नरक के द्वार हैं। जब हमारे भीतर काम, क्रोध और लोभ भरे होते हैं तो बाहर भी वही चीजें हमें आकर्षित करने लगती हैं। जिसके भीतर क्रोध है उसे लड़ाई इंटरेस्टिंग लगेगी, जिसके भीतर लोभ है उसे दूसरों की सक्सेस देख कर जलन होगी ही होगी, किंतु जिसके भीतर भगवान का नाम बसने लगे उसे कीर्तन में आनंद आने लगता है, सत्संग में शांति मिलने लगती है और भक्ति में सच्ची खुशी मिलने लगती है। इसलिए समझदार इंसान वही है जो दुनिया की भीड़ देखकर रास्ता नहीं चुनता, बल्कि अपने मन को देखकर रास्ता चुनता है, क्योंकि भीड़ हमेशा सही दिशा में नहीं जाती किंतु भक्ति हमेशा सही मंजिल तक पहुंचाती है। इस पर कीजिए विचार और मुझे दीजिए आज्ञा, फिर लेकर आऊंगा आपके लिए पुण्य दर्शन। मैं हूं आपका दास, नमस्कार।

0: ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा, कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू।
1: ऑर्बिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उनां दे सुपनिआं दा एक मजबूत कर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252 ते।
2: किचन दा स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया ZJ स्टोन मेसन, पार्टी करनु बनाए एकदम क्लासी। असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।
3: पेंजी की हाल है पेट दर्द दा?
4: जदो दा स्लीप एंड रिलैक्स दा इंडियन स्टाइल रूम वाला गद्दा खरीदया सब कुछ ठीक है। थैंक यू एदे बारे दसन लई।
5: और सुनो हुन स्लीप एंड रिलैक्स हर तरह दे गद्दियां दे नाल बेड भी बनाउंदे ने। स्लीप एंड रिलैक्स दा एक स्टोर लेवेटन नॉर्थ अते दूजा नवा स्टोर ओहंस रोड एपिंग विच भी है। मनपसंद गद्दियां अते स्टोरेज बेड खरीदन लई कांटेक्ट करो स्लीप एंड रिलैक्स। वेक अप फीलिंग टोटली रेस्टेड। सर्च अस ऑनलाइन और कॉल 0433-465-492।
6: मिल बंदे साउथ ईस्ट इलाके दे सारे बिल्डर्स ते ब्रिक लेयर्स ले खुशखबरी। तुहाडी हर बिल्डिंग दे स्ट्रक्चर दी एक मजबूत नींव अते दमदार पहचान देन ले आ गए ने ओज लिंटल्स। ओज लिंटल सप्लाई करदे ने सारे साइजेस दे गैल्वनाइज्ड ब्रिक लिंटल, टी बार्स, इक्वल एंड अनइक्वल एंगल्स। असी करा दे विच स्टील फैब्रिकेशन सप्लाई अते इंस्टॉल भी करदे हां। कॉन्टैक्ट 0423-102-900, ईमेल sales@ozlintels.au।
7: चलदी दा नाम गड्डी आते सुनिया ही होना ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे उनु चलाउन ले ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स जिना को लॉग बुक सर्विसिंग मैकेनिकल रिपेयर्स इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स यूनिट 1 19-25 सुमर्टन रोड कैंपलफील्ड। कॉल 0390-866-55 और विजिट tireforce.com.au।
8: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
9: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्ना ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
8: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
9: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो बंसल immigration.com.au।
10: ਆ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜ ਗਈ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ?
9: ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂ ਪਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੀਗਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਗਾ ਕਿਵੇਂ?
10: ਤੇਰੇ ਵਾਂਗ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਮੈਸ਼ ਰਿਪੇਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਇਰਸ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਟੀਮ, ਆਲ ਮੇਜਰ ਐਂਡ ਮਾਈਨਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਵਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਵਰਕ ਐਂਡ ਪੇਂਟ, ਫ੍ਰੀ ਲੋਨ ਕਾਰ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਆਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਂਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕੰਮ ਤੇ। ਫ੍ਰੀ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਸ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 0383-85-7048 ਤੇ। ਸਿੰਘ ਸਮੈਸ਼ ਰਿਪੇਅਰ, 8 ਗ੍ਰੇਸ ਵੇ, ਰੇਵਨ ਹਾਲ।
11: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
12: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
11: तुसी भी अज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड टी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

0: सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत एक कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 पे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: मिल बंदे साउथ ईस्ट इलाके दे सारे बिल्डर्स ते ब्रिक लेयर्स ले खुशखबरी, तुहाडी हर बिल्डिंग दे स्ट्रक्चर दी एक मजबूत नींव अते दमदार पहचान देन ले आ गए ने ओज लिंटल्स। ओज लिंटल सप्लाई कर देने सारे साइजेस दे गैल्वनाइज्ड ब्रिक लिंटल, टी बार्स, इक्वल एंड अनइक्वल एंगल्स। असी करा दे विच स्टील फैब्रिकेशन सप्लाई अते इंस्टॉल वी करदे हां। कॉन्टैक्ट 04231029000, ईमेल sales@ozlintels.au।

अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उना दे सुपनियां दा एक मजबूत कर हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वरियां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नु 04332802552 ते 04332802552

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: मिल बंदे साउथ ईस्ट इलाके दे सारे बिल्डर्स ते ब्रिक लेयर्स लई खुशखबरी, तुहाडी हर बिल्डिंग दे स्ट्रक्चर दी एक मजबूत नींव अते दमदार पहचान देन लई आ गए ने ओज लिंटल्स। ओज लिंटल सप्लाई करदे ने सारे साइजेस दे गैल्वनाइज्ड ब्रिक लिंटल, टी बार्स, इक्वल एंड अनइक्वल एंगल्स। असी करा दे विच स्टील फैब्रिकेशन सप्लाई अते इंस्टॉल वी करदे हां। कॉन्टैक्ट 0423-102-900, ईमेल sales@ozlintels.au।
3: ओह मारे गए, दोबारा देर हो गई। गड्डी चलाउण विचों तनाव नूं बाहर कढो अते घरों पहला ही तुर पाओ। जे तुसी गति सीमा तों तेज गड्डी चलाउंदे हो तां तुसी कानून नूं तोड़ रहे हो अते तुहानूं महंगा जुर्माना हो सकता है जां अपना लाइसेंस गुआ सकते हो। TSC वल्लों सुनेहा, हर किसे वास्ते सुरक्षित तरीके नाल गड्डी चलाओ।
4: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मैनू भी दस दे सीक्रेट।
5: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दुध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
4: तुसी भी अज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
6: बलजीत, ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਜੁਲਰੀ ਵੇਖਣ ਤੁੰਨਾ ਜੁਲਰਸ ਚਲੀਏ?
0: ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਂਡੀ ਨੋਗ ਵਾਲਾ ਸਟੋਰ ਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਦੂਰ ਹੈ।
6: ਓ ਹੁਣ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਡੈਂਡੀ ਨੋਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਸੈਂਟ ਐਲਬਨਸ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨਾ ਜੁਲਰਸ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਭਰੋਸਾ ਤੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਰੈਡੀਮੇਡ ਗੋਲਡ, ਡਾਇਮੰਡ ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਜੁਲਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ ਜੁਲਰੀ ਵੀ। ਤੁੰਨਾ ਜੁਲਰਸ, 99 Main Road ਵੈਸਟ, ਸੈਂਟ ਐਲਬਨਸ ਅਤੇ 341 Lonsdale Street, ਡੈਂਡੀ ਨੋਗ। ਫੋਰ ਮੋਰ ਇਨਫੋ ਕਾਲ 0499-2535-45 ਤੇ।